0: back right after the commercial break.
1: ख्वाबों को हकीकत में बदले आपके ख्वाबों की खूबसूरती अब बेलडोना कॉस्मेटिक्स के साथ नए साल में एक नया आगाज.
2: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk.
3: बोल मेरे बकरे खाएगा क्या?
4: Yes!
3: मेरे प्यारे बकरे तुझे लेकर जाऊं कहां? ओ मेरे बकरे गाएगा क्या?
4: एक मैं, एक तू.
3: उठाए अपने बकरे के नाज और नखरे, वो भी कुर्बान होने से.
5: जब हर तरफ खुशबू हो,
6: जब हर चेहरा
3: फसाना, अपना समझो या बेगाना, हमारा तुम्हारा रिश्ता है पुराना, इसलिए फर्ज था बताना कि बकरा ईद आ रही है, अब शुरू कर दो घास खाना.
7: इस तरह की चटपटी बातें सुनने के लिए तैयार.
8: मसाजिद से बुलंद होती तकबीरें, घरों में मीठी सवैयों की खुशबू और हर चेहरे पर खुशी की मुस्कुराहट,
9: और हर चेहरे पर खुशी की मुस्कुराहट.
8: तमाम सुनने वालों को दिल से ईद मुबारक. आप इस वक्त सुन रहे हैं रेडियो दिलबर FM 94 सवाबी, जहां ईद के इस खूबसूरत दिन पर जारी है ईद स्पेशल लाइव ट्रांसमिशन. आपके पसंदीदा गाने, खूबसूरत पैगामात, दिलचस्प गुफ्तगु और ईद की खुशियों से भरपूर लम्हात. सो स्टे ट्यून्ड, अपने दोस्तों और प्यारों के साथ ईद की खुशियां बांटते रहिए सिर्फ दिलबर FM 94 सवाबी, द रियल साउंड ऑफ सेलिब्रेशन.

ओके जनाब, ये जुल्फिया दोस्तों हरकली जी, एक मरतब फिर आप लोगों को सभी को वेलकम कहा जाता है FM 94 रेडियो दिलवर स्वाबी की फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन पे। बहुत बहुत शुक्रिया FM 94 रेडियो दिलवर स्वाबी सुनने का। एंड यार दिल में तो काफी सारे गिल्ले हैं, लेकिन गिल्ले चले गिल्ले कर देते हैं। वो कहते हैं ना, वैसे भी कहा जाता है पश्तो में कि गिले दखपुल नकी फ्रदुन नकी।

वैसे ये भी बहुत बड़ी बात होती है, एक बंदा दिल के जख्म जो है ना छुपा के रोए और आहिस्ता आहिस्ता रोए, चुपकी चुपकी रोए, और ये कि अपने रोने की मतलब वजह भी ना बताए कि किस वजह से रो रहा हूँ।

वापस से बाहर बेपरवाह बस चल गई जमा पसानी जड़न दे न दा मुमकिन न दा मुमकिन दा जमा पसानी जड़न दे न दा मुमकिन दा जमा पसे बाहर बेपरवाह बस चल गई जमा खूबुन खन ब्यावरान खूबुन विनम जमा खूबुन खन ब्यावरान खूबुन विनम जाना जान ख्याल सातच ब्या बस चलगी जमा मोहब्बत उस हग मुकाम तर सिदले जमा मोहब्बत उस हग मुकाम तर सिदले चिता गमजन विनम पमा बस चलगी कमादत अहवाल द बेलताना द जुंदुनवी कमादत अहवाल द बेलताना द जुंदुनवी शायद तब उजाड़े।

आप सुन रहे हैं दिलबर एफएम सवाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन, कुरान की तिलावत, सुन्नत भरी बातें और दिल को सुकून देने वाले लम्हे। यहाँ हर लफ्ज में ईमान की रोशनी है। दिलबर एफएम 94 सवाबी।

आप सुन रही हैं दिलबर एफएम सवाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन, कुरान की तिलावत, सुन्नत भरी बातें और दिल को सुकून देने वाले लम्हे। यहाँ हर लफ्ज में ईमान की रोशनी है। दिलबर एफएम 94 सवाबी। दिलबर एफएम 94।

0: इंसान तंदुरुस्त हो तो हर दिन नया लगता है। ताज बीमारी जिस्म पर दस्तक दे तो मदहम हो जाते हैं। ऐसे वक्त में जरूरत होती है एक ऐसे मरकज़े शिफा की जहां दवा के साथ दुआ का यकीन भी शामिल हो। और अब वही यकीन, वही उम्मीद आपके अपने शहर सवाबी में, जहांगीरा रोड शाह मंसूर बाबा मदरसा के करीब शाह मंसूर में मौजूद है। हैदर मोमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं बल्कि इत्मीनान, भरोसे और शिफा की वो जगह है जहां मरीज को फाइल नहीं एक इंसान समझा जाता है, जहां इलाज सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि इंसान के एहसासात का भी होता है। ज़ेरे निगरानी डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद, जो अपने तजर्बे, इल्म और खुलूस से हर मरीज के लिए शिफा का जरिया बने हुए हैं। उनके साथ मौजूद हैं हाई काबिल और महारत याफ्ता डॉक्टर्स की टीम, जो हर मरीज के इलाज को एक फर्ज, एक खिदमत और एक मिशन समझती है। चाहे मसला शुगर का हो या ब्लड प्रेशर का, मैदे के मसाइल हो या जोड़ों का दर्द, दमा, एलर्जी या सांस की दुश्वारी हो, खवातीन के अमराज या आसाबी थकन, हर बीमारी का कुदरती, महफूज और देरपा इलाज सिर्फ हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी में। यहाँ ना खतरनाक दवाएं, ना साइड इफेक्ट, बस खालिस होम्योपैथिक इलाज जो जिस्म के साथ दिल को भी सुकून देता है, क्योंकि यहाँ यकीन है कि शिफा दवा से नहीं दुआ से भी मिलती है। अपना अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए या बराहे रास्त डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद से राब्ता करने के लिए अभी कॉल करें 0331-939-4941। आपकी सेहत हमारा अज़्म, आपका एतमाद हमारी पहचान। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी।
1: मूसा स्टेशनरी एंड बुक सेंटर होलसेल डीलर मुंसर बतावस्ता दहर यू स्कूल कापियानी किताबुना गाइड्स कलर पेंसिल्स बॉल पॉइंट्स रजिस्टर्स कागज व्हाइट बोर्ड्स हर किस्म द स्पोर्ट्स यानी दलूब सामान चाइना स्टेशनरी और हर किस्म स्टेशनरी बतावस्ता पर होल सेल रेट मिलावेगी द स्कूल और कॉलेज द पारा द मुकम्मल सिट पर खरीदारे बांधे खपल गिफ्ट अखिस्तल महरवे न पता याद साथे मूसा स्टेशनरी एंड बुक सेंटर होल सेल डीलर कोमेटे मार्केट नज अमन चौक सवाबी प्रोप्राइटर उबैद खान मोबाइल नंबर 0311-8353-514 वेब नंबर दे 0303-8852-138।
2: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیون شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بې حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختم شوی وي دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانا چې او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کګی وی نو د هغه ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اوس بعد هر اتوار پر باندې سحر د اتو بجو نو واخلي مازیګر تر سلور بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو په تیار ساته بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موړ جهانگیرا روډ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0314-15-13-232 یعنی کې 0314-15-13-232

0: प्यारे बकरे खाएगा क्या? मेरे प्यारे बकरे तुझे लेकर जाऊं कहां? ओ मेरे बकरे गाएगा क्या?
1: एक मैं, एक तू।
0: उठाए अपने बकरे के नाजर नखरे, वो भी कुर्बान होने से।
2: प्रॉपर्टी अटक शहर तौसीफ अहमद खाकसार और मुकम्मल टीम लखवाना टूल मीनावाल दगट अख्तर गटे खुशाले डेरे डेरे मुबारक शाह सेफ हैंड प्रॉपर्टी अटक शहर कम की चिबता उसका पिंज मरले लस मरले दयो कनाल दिर्श मरलो और मुख्तलिफ किस्म साइजनो कमर्शियल और कुरुन दपारा प्लाटूना मिलावेगी और कम छिप आसान अकसात और कैश तरह तरला से कवले से कुशादर उडुना द उबो सहूलत खपल जुमात और स्कूल और नूर हर किस्म सहूलियात पकी हम मौजूद दी सेफ हैंड प्रॉपर्टी अटक शहर मोबाइल नंबर 0315-6386-080।
0: हकीकत समझो या फसाना, अपना समझो या बेगाना, हमारा तुम्हारा रिश्ता है पुराना, इसलिए फर्ज था बताना कि बकरा ईद आ रही है, अब शुरू कर दो घास खाना।
3: इस तरह की चटपटी बातें सुनने के लिए तैयार।
2: खान दरबार रेस्टोरेंट अंबार इंटरचेंज सोबे द मैनेजिंग डायरेक्टर शाह साहिब इफ्तिहार साहब और द आरजे अरशद इकबाल लतरफ ना टोल मीना वालो ता द गट अख्तर गट खुशाले डेरे डेरे मुबारक शाह खान दरबार रेस्टोरेंट पा द दो तारीख पूरे बंद हुई और तीन तारीख पर दोबारा ओपनिंग कवि द बेहतरीनो और जायकेदार खुराकुनो वाहिद मरकज खान दरबार रेस्टोरेंट अंबार इंटरचेंज सवाबी मोबाइल नंबर है दे 0336-30-34-636।
4: ईद खुशियों का नाम है, खतरनाक खेल का नहीं। हवाई फायरिंग किसी मासूम की जान ले सकती है और आपके लिए कानूनी मसाइल पैदा कर सकती है। अपनी और दूसरों की खुशियों को महफूज बनाएं, हवाई फायरिंग से गुरेज करें। ये पैगाम आपके लिए बेला डोना कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान और रेडियो की तरफ से नशर किया गया। बच्चों को आतिशबाजी और पटाखों से दूर रखें, खुशियां महफूज हों तो ईद यादगार बनती है। आतिशबाजी और पटाखों से हाथ जल सकते हैं और हादसात भी हो सकते हैं। अपने बच्चों को इन खतरात से दूर रखें और एक महफूज ईद मनाएं। ये पैगाम आपके लिए बेला डोना कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान और रेडियो दिलबर एफएम 94 सवाबी की तरफ से नशर किया गया।
2: साद इंटरनेशनल ट्रेवल एंड टूर्स साद इंटरनेशनल ट्रेवल एंड टूर्स तरफ ना टूल मीना वालों ता दलवी अख्तर लुई खुशाले डेरे डेरे मुबारक शाह साद ट्रेवल एंड टूर्स अब्दुल रहमान प्लाजा सवाबी मुंसर दमरे द हर किस्म पैकेज और द हर किस्म एयरलाइन द टिकट लपारा खपत मोहरे एतमाद सरा सीओ शाहिद खान।
3: ईद की खुशियाँ मुबारक हो।
4: हम सायंटे शोर न फैलाए, ऊंची आवाज में म्यूजिक बजाना और शोर शराबा करने से दूसरे लोग परेशान हो सकते हैं। अपनी खुशियों के साथ साथ दूसरों के सुकून का भी ख्याल रखें। ये पैगाम आपके लिए बेला डोना कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान और रेडियो दिलबर एफएम 94 सवाबी की तावन से पेश किया जा रहा है।
2: शार बाजार द शारजा ज्वेलर्स मीना बाजार टूपी द इरफान हसन और बसीर हसन लोकवाना टूल मीना वालो ता दगट अख्तर गटे खुशाले डेरी डेरी मुबारक शाह द दीदा जिप कालो वाहिद मरकज।

0: प्यारे बकरे खाएगा क्या? मेरे प्यारे बकरे तुझे लेकर जाऊं कहां? ते बकरे गाएगा क्या?
1: एक मैं, एक तू।
0: नाज़र नखरे वो भी कुर्बान होने से पहले। प्रॉपर्टी
2: अटक शहर तौसीफ अहमद खाकसार और मुकम्मल टीम लखवाना तूल मीनावाल उता दगट अख्तर गटे खुशाले डेरे डेरे मुबारक शाह सेफ हैंड प्रॉपर्टी अटक शहर कम की ची बताओ उस्ता पिंजा मरले लस मरले दयो कनाल दिर्शु मरलो और मुख्तलिफ किस्मा साइजनो कमर्शियल और कुरुन द पारा प्लाटुना मिलावेगी और कम छिप आसान अकसात और कैश तरह ताजु तरला से कवल इशे कुशादर उडुना द उबो सहूलत खपल जुमात और स्कूल और नूर हर किस्म सहूलियात पकी हम मौजूद दी सेफ हैंड प्रॉपर्टी अटक शहर मोबाइल नंबर 0315-6386-080।
0: हकीकत समझो या फसाना, अपना समझो या बेगाना, हमारा तुम्हारा रिश्ता है पुराना, इसलिए फर्ज था बताना कि बकरा ईद आ रही है, अब शुरू कर दो घास खाना।
3: इस तरह की चटपटी बातें सुनने के लिए तैयार।
2: खान दरबार रेस्टोरेंट अंबार इंटरचेंज सोबे द मैनेजिंग डायरेक्टर शाह साहिब इफ्तिहार साहिब और द आरजे अरशद इकबाल लतरफना टोल मीना वालों ता द गट अख्तर गटे खुशाले डेरे डेरे मुबारक शाह खान दरबार रेस्टोरेंट पा द दो तारीख पूरे बंद हुई और पतीन तारीख पर दोबारा ओपनिंग कवि द बेहतरीनों और जायकेदार खुराकुनों वाहिद मरकज खान दरबार रेस्टोरेंट अंबार इंटरचेंज सवाबी मोबाइल नंबर है दे 0336-30-34-636।
4: साद इंटरनेशनल ट्रेवल एंड टूर्स साद इंटरनेशनल ट्रेवल एंड टूर्स तरफ ना टूल मीना वालों ता दलवी अख्तर लुई खुशाले डेरे डेरे मुबारक शाह साद ट्रेवल एंड टूर प्लाजा सवाबी मुंगसर द उमरे और द हर किस्म एयरलाइन द टिकट लपारा खपज मुआवरे एतमाद सरा राबिता उकड़े सीओ शाहिद खान मोबाइल नंबर 0398-28-629।
3: आप सबको ईद की खुशियाँ मुबारक हो।
4: शारजा ज्वेलर्स मीना बाजार टूपी द शारजा ज्वेलर्स मीना बाजार टूपी द इरफान हसन और बसीर हसन लोकवाना टूल मीना वालों ता दगट अख्तर गटे खुशाले डेरे डेरे मुबारक शाह दीदा जीब कालू वाहिद मरकज द क्वालिटी और वजन जिम्मे सरा काली कतर।

0: बोल मेरे बकरे, खाएगा क्या? मेरे प्यारे बकरे, तुझे लेकर जाऊं कहां? ओ मेरे बकरे, उठाए अपने बकरे के नाज और नखरे, वो भी कुर्बान होने से
1: प्रॉपर्टी अटक शहर तौसीफ अहमद खाकसार और मुकम्मल टीम लखवाना टूल मीनावाल दगट अख्तर गटे खुशाले डेरे डेरे मुबारक शाह सेफ हैंड प्रॉपर्टी अटक शहर कम की चिबताओ पीज मरले लस मरले दयो कनाल दीर्श मरलो और मुख्तलिफ किस्म सहीजनो कमर्शियल और कुरून दोपारा प्लाटून मिलावेगी और कम छिप आसान अकसात और कैश तरह तरला से कवले शे खुशादर उडुना द उबो सहूलत खपल जुमात और स्कूल और नूर हर किस्म सहूलियात पके हम मौजूद दी सेफ हैंड प्रॉपर्टी अटक शहर मोबाइल नंबर 0315-6386-080।
0: हकीकत समझो या फसाना, अपना समझो या बेगाना, हमारा तुम्हारा रिश्ता है पुराना, इसलिए फर्ज था बताना कि बकरा ईद आ रही है, अब शुरू कर दो घास खाना।
2: इस तरह की चटपटी बातें सुनने के लिए तैयार
1: खान दरबार रेस्टोरेंट अंबार इंटरचेंज सोबे द मैनेजिंग डायरेक्टर शाह साहिब इफ्तिहार साहब और द आरजे अरशद इकबाल लतरफना टोल मीना वालों ता द गट अख्तर गटे खुशाले डेरे डेरे मुबारक शाह खान दरबार रेस्टोरेंट पा द दो तारीख पूरे बंद हुई और पा तीन तारीख पा दोबारा ओपनिंग कभी द बेहतरीनो और जायकेदार खुराकुनो वाहिद मरकज खान दरबार रेस्टोरेंट अंबार इंटरचेंज सोबे मोबाइल नंबर है दे 0336-30-34-636।
3: साद इंटरनेशनल ट्रेवल एंड टूर्स साद इंटरनेशनल ट्रेवल एंड टूर्स तरफ ना टूल मीना वालों ता दलवी अख्तर लोई खुशाले डेरे डेरे मुबारक शाह साद ट्रेवल एंड टूर्स अब्दुलरहमान प्लाजा सोवाबी मुंगसर द उम्रे द हर किस्म पैकेज और द हर किस्म एयरलाइन द टिकट लपारा खपज मुवरे एतमाद सरा राबिता उकड़े सीओ शाहिद खान मोबाइल नंबर 0398-28-629।
2: सबको ईद की खुशियाँ मुबारक हो।
3: शारजा ज्वेलर्स मीना बाजार टूपी द शारजा ज्वेलर्स मीना बाजार टूपी द इरफान हसन और बसीर हसन लोकवाना टूल मीना वालों ता दगट अख्तर गटे खुशाले डेरे डेरे मुबारक शाह द दीदा जीब कालू वाहिद मरकज द क्वालिटी और वजन जिम्मे सरा काले के तैयार भी और कप ऑर्डर जोड़ा बुलवाड़े पता याद साते शारजा ज्वेलर्स मीना बाजार टूपी।

मतलब इस टाइम आपने, वैसे ये सोचने वाली बात है कि सवेरा ने मतलब जो है ना सुबह आना था, लेकिन ये अभी आ गई है। सितारा जेब हमारे साथ दे रही हैं जी, और ये कह रही हैं कि मैं ईमान की कजन हूँ। मैं एक सॉन्ग आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, वो सॉन्ग आप प्ले कर दीजिएगा जिशान रोकड़ी की आवाज में। और अच्छा, जिशान रोकड़ी की आवाज में प्ले कर सकते हैं, जिशान रोकड़ी की आवाज में प्ले कर दें, नहीं तो अताउल्लाह खान इस खेलवी की आवाज में, अताउल्लाह खान इस खेलवी की आवाज में शामिल कर दीजिएगा। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया जी सितारा जेब, आपने हमारे साथ दिया। सितारा जेब के अलावा नेक्स्ट हमारे साथ कौन दे रहे हैं, कहाँ से? अहमद हमारे साथ दे रहे हैं जी, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद, आपने हमारे साथ दिया अटक से। तमाम सुनने वालों को सलाम कह रहे हैं, कह रहे हैं कि ताहिर भैया आपको बहुत सारा सलाम और स्पेशल सलाम। मैसेजेस आप लोगों के स्टॉप नहीं होने चाहिए भाई, आप लोगों ने मैसेजेस करने हैं, ठीक है ना? मैसेजेस कम देना उस्ताद, सो लक्का दी बुखार से उदगी। कम ऑन 0334400409 सुख सुख इंटरेस्टेड दी लखज कम देनो ओ बजो फॉर रिजर्व प्रोग्राम ओ कम मतलब साथ दो, तो वो भी एक एक मैसेज करके मुझे बताएं कि 7 बजे तक ताहिर भाई जो है ना आप ऑन एयर रहें, या 7 बजे तक मतलब जो है ना इसी सिलसिले को यहीं मतलब जो है ना यूं ही कंटिन्यू रखें, तो फिर उस बारे में भी थोड़ा सा सोचा जा सकता है। अदरवाइज ये है कि अगर आप लोगों का इंटरेस्ट ना हुआ तो फिर मुझे भी बहुत सारे काम है, मैंने भी मतलब जो है ना कहीं जाना है। तो जल्दी जल्दी से अपने अपने मैसेजेस करें, अपने अपने पैगाम जो है ना मुझे भिजवाएं।

पर तीन तीन चार चार चार सिफर सिफर नौ सात छ सिफर तीन तीन चार चार चार सिफर सिफर नौ सात छ जीरो डबल थ्री फोर डबल जीरो नाइन सेवन।

हाय मीना दामादा लगज गमदेनो सुखी ओर दे। जी हाँ जनाब, एक मरतबा फिर दिल की गहराइयों से वेलकम कहते हैं। आहा, एक मरतबा फिर आप लोगों को वेलकम कहा जाता है। आप सभी को कैसे हैं? आप ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं? यकीनन आप ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अपनी अपनी जिंदगी में मस्त होंगे। और इस वक्त FM 94 रेडियो दिलबर स्वावी की खूबसूरत नशरियात आप तक पहुंच रही होंगी और मेरी आवाज यानी कि ताहिर जमान की आवाज आपके दिलों तक रास्ता बना रही है जी। और जनाब आज ईद का तीसरा दिन भी है, वो दिन जब खुशियों की रौनकें जो है ना आहिस्ता आहिस्ता थकन में बदलने लगती हैं।

मेहमान हाय मेहमान भी जो है रुखसत हो जाते हैं, मेहमान नवाजियां भी जो है ना कुछ कम होने लगती हैं, और दिल ये सोचने लगता है कि ईद इतनी जल्दी मतलब क्यों गुजर गई। और गर्मी है जी, गर्मी अपने मतलब जो है ना पूरे जोबन पर है, धूप तेज है, हवा भी गर्म है, लेकिन फिर भी जो है ना ईद की खुशियां अपना ही मतलब जो है ना एक अलग मजा रखती हैं। कुछ लोग इस वक्त घरों में जो है ना आराम कर रहे होंगे, कुछ दोस्तों के साथ बैठे कहके लगा रहे होंगे, हंस रहे होंगे, कुछ लोग गाड़ियों में घूमते हुए जो है ना रेडियो सुन रहे होंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जो चाय का कप जो है ना हाथ में लिए खामोशी से ये प्रोग्राम सुन रहे होंगे। सो जनाब, ईद के तीसरे दिन की मसरूफियात भी जो है ना अलग है, मतलब इस तरह की मसरूफियात होती है ना कि बंदा मतलब ये है कि कुछ थोड़ा मसरूफ भी होता है और कुछ थोड़ा सा ये कि फ्री भी होता है, फारिग भी होता है। वो दिन जब खुशियों की रौनकें जो है ना आहिस्ता आहिस्ता थकन में बदलने लगती हैं। अच्छा जनाब, ईद का ये दिन जो है ना इस तरह का मतलब आखिरी दिन होता है ना कि सुकून से बैठकर बंदा जो है ना तस्वीरें देखता है, पिक्चर्स देखता है, ईद के दिनों को याद करता है, और साथ में मतलब ये भी कहते हैं कि यार कल से जो है ना फिर वही पुरानी वाली रूटीन, पुराने वाले मतलब जो है ना काम काज, है ना ऐसे ही है। अच्छा जी, गर्मियों में अगर देखा जाए तो गर्मियों में भी मतलब ईद का एक अलग टाइप का मजा आता है जी बंदे को, जब ठंडा जूस हो, ठंडी बोतल हो और साथ में अपने लोग हों। कुछ लोग देखें, कुछ घर में अभी भी मतलब बारबेक्यू चल रहा होगा, कहीं टिक्के बन रहे होंगे, कहीं कबाब की खुशबू जो है ना फिजाओं में गुल रही होगी, और यह है कि कहीं बिरयानी दोबारा जो है ना गर्म हो रही होगी। जनाब, ख्वातीन की मसरूफियात तो आज भी जो है ना खत्म होने को नहीं है, किचन भी संभालना, मेहमान भी देखने, बच्चों को भी मतलब जो है तैयार करना, और खुद भी जो है ना मुस्कुराते रहना, खुद भी डबल सिंगार करना, कभी चूड़ियों की आवाज, कभी मेहंदी की हल्की सी और हल्की सी खुशबू, कभी हंसी मिजाक, कभी थकन के बावजूद जो है ना चेहरे पर वही खूबसूरत मुस्कुराहट। और जनाब, ईद असल में जो है ना इन्हीं लम्हों का नाम है, अपनों के साथ बैठना, हंसना, खाना, यादें बनाना और दिलों में मोहब्बतें जमा करना। लेकिन सच कहें अगर हम यहाँ पे, तो अगर ताहिर जमान सच बोले तो ईद जितनी खूबसूरत होती है ना इतनी जल्दी गुजर जाती है। कल तक चांद रात थी, पहला दिन था, फिर दूसरा दिन, और आज तीसरा दिन भी जो है ना डल रहा है, और इंसान यही सोचता रह जाएगा या मतलब जो है ना इंसान यही सोचता रह जाता है कि वक्त आखिर जो है ना इतनी तेजी से क्यों गुजर जाता है। तो जनाब, जहां भी हैं, जिस हाल में भी हैं, इस लम्हे को महसूस कीजिए, ठंडा पानी पीजिए और अपना ख्याल रखिए। गर्मी बहुत ज्यादा है, इसलिए बाहर निकलने से पहले जो है ना आप लोगों ने कुछ थोड़ी सी एहतियात करनी है, और अपनी खुशियों को दिल से मतलब जीने की कोशिश करनी है, ये भी मतलब आप लोगों का एक काम है। और जिंदगी बार बार देखिए, जिंदगी में बार बार ईदें नहीं आती जी, और हर ईद हर बार एक जैसी होती भी नहीं है। सो आपने अपने आप का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, और ईद को अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करना है, जैसे आप लोगों ने मनाना है। ठीक हो गया जी।

0: अच्छा, ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि भाई जब भी कॉल मिले तो कोशिश करें कि रेडियो का वॉल्यूम जो है ना कम करें। जनाब बाजू का जो है ना इंसान एक ही बात बार बार जो है ना मोहब्बत से समझाता है, बार बार कहता है, बार बार दरख्वास्त करता है, मगर फिर भी जो है ना कुछ लोग समझना नहीं चाहते शायद, मतलब समझना ही नहीं चाहते। मैं बार बार जो है ना यही कह रहा हूँ कि जनाब जब भी आप लोगों की कॉल मिले तो रेडियो को वॉल्यूम कम कर दें, ताकि जो है ना आपकी आवाज और भी साफ आए, बात अच्छे से हो और एहसास भी जो है ना खूबसूरत हो, और खूबसूरती के साथ मतलब आप लोगों का एक एहसास हवा के दोष पे एफएम 94 रेडियो दिलबर स्वाबी से ऑन एयर हो, दूसरों तक पहुंचे। मगर पता नहीं कुछ लोग कौन सी जुबान समझना चाहते हैं, कभी प्यार से समझाओ तो लोग मजाक समझ लेते हैं, कभी नरमी से बात करो तो संजीदा नहीं होते या मतलब जो है ना संजीदगी से नहीं लेते, और कभी बार बार कहो तो फिर कहते हैं कि इतना क्यों मतलब जान बोल रहे हो। हालांकि जनाब बात सिर्फ जो है ना आवाज की नहीं होती, बात एहसास की होती है, बात उस खूबसूरत राब्ते की होती है। जो या मतलब इस खूबसूरत राब्ते की बात हो रही है जो आपके और मेरे मतलब जो है ना दरमियान बनता है, ठीक है। जब कॉल पर रेडियो की आवाज तेज होती है ना तो अल्फाज एक दूसरे में उलझ जाते हैं, बात का मजा नहीं आता, बात मतलब जो है ना पूरे तरीके से बंदा समझ नहीं पाता, और वो एहसास जो दिल तक मतलब मैं पहुंचाना चाहता हूँ या पहुंचाना चाह रहा था, वो शोर में जो है ना कहीं खो जाता है। जो इंसान तवज्जो से सुनता है ना वही असल में समझता भी है, क्योंकि समझना सिर्फ जो है ना कानों का काम नहीं है बल्कि दिल का काम भी होता है। बाद लोग सिर्फ आवाज सुनते हैं और बाद लोग जो है ना बात के पीछे छुपा एहसास भी महसूस कर लेते हैं। तो जनाब एक छोटी सी गुजारिश मैंने आप लोगों से ये करनी है कि जब भी कॉल करें रेडियो का वॉल्यूम जो है ना थोड़ा सा कम करें, ताकि जो है ना आपकी आवाज और भी मोहब्बत से सुनाई दे और भी खूबसूरती से मतलब जो है ना आगे फैले। तो इस चीज का बहुत ज्यादा आप लोगों ने कलर चेक करता हूँ, हमारा मतलब हमारे साथ कौन दे रहे, साथ कौन निभा रहे हैं और कहाँ से निभा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो
1: हेलो
0: अस्सलाम वालेकुम। बखैर ना बखैर जी, सो खबर के विदकम जहरा دوبارہ پتہ بانے نہیں پویا چاہ میسج نہ بلکہ کم نہ چاہ کال راغلو۔

आवाज में ओके दीजिए और सस प्रोग्राम होम्स कमने नो सम कुले दे हेलो द मैसेज चार अगले जी द ताहिरे मैसेज करे दे मनाना शुक्रिया ताहिरे सिंगे खे ठीक ठाक ये सब खुशहाल है भाई हाँ अख्तर लगे कमने नो खतीरी का ना खबर दाची अख्तर दे खतीरी की और खतीरे

नूर फातिमा हरनौ से बात कर रही है। नूर फातिमा, अभी आपकी लाइव कॉल है FM 94 रेडियो दिलबर सोबी से। सो नूर फातिमा प्रोग्राम सुन रही हैं या वैसे ही बेतुक्का, मतलब जैसा ना आपने नंबर डायल कर दिया और कॉल मिल चुकी है आपकी? नूर फातिमा, अच्छा नूर फातिमा की कॉल भी कट गई है जी। नूर फातिमा

रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। जनाब, जिंदगी अगर किसी चीज का नाम है तो मैं अगर यहाँ पे बात करना जरूर कहना चाहूंगा। इससे पहले एक मैसेज आया था ना जनाब, जिंदगी अगर किसी चीज का नाम है ना तो वो मोहब्बत है। मोहब्बत ना हो तो जिंदगी सिर्फ जो है ना दिन गुजारने का नाम रह जाती है, और जहाँ मोहब्बत आ जाए वहाँ आम से लम्हे भी खास बन जाते हैं। कभी किसी की बातों में मोहब्बत मिलती है, कभी किसी की खामोशी में, कभी किसी की तवज्जो में, और कभी किसी के सिर्फ ख्याल रखने में। एक पूरी दुनिया की अपनायत मतलब जो है छुपी होती है ना किसी के ख्याल रखने में। और जनाब यहाँ ये बात मैं कहना चाहूंगा जनाब, ईद भी तो असल में मोहब्बत का ही दूसरा नाम है। ईद आती है तो दिल चाहता है कि अपने लोग पास हों, हंसी हो, अपनाइयत हो, कोई मोहब्बत से ईद मुबारक कहने वाला हो, कोई ऐसा हो जिसकी आवाज सुनकर दिल को सुकून मिल जाए। कुछ लोग नए कपड़ों में मतलब जो है ना खुशी ढूंढते हैं कुछ ईदी में, और कुछ लोग सिर्फ जो है ना किसी एक खास इंसान की तवज्जो में पूरी ईद गुजार देते हैं। जनाब कभी गौर किया हो तो ईद की रातों में मोहब्बत और जो एक चाहत होती है ये बहुत ज्यादा मतलब खूबसूरत लगने लगती है। मेहंदी की खुशबू, चूड़ियों की खनक, मतलब बैंगल्स के हवाले से बात कर रहा हूँ, चूड़ियों के हवाले से, बंगड़ों के हवाले से खबरी कौम, हल्की हल्की मुस्कुराहटें और रात के किसी पहर में रेडियो पर चलते हुए एहसास, ये सब दिल को मतलब जो है ना एक अजीब से सुकून देते हैं ना। कुछ लोग इस वक्त छतों पर मतलब बैठे होंगे, छतों पर बैठे मेरी आवाज सुन रहे होंगे, कुछ ठंडी हवा में मोबाइल हाथ में लिए किसी की यादों में जो है ना गुम होंगे, कुछ लोग खामोशी से ये प्रोग्राम सुन रहे होंगे और दिल ही दिल में जो है ना किसी को महसूस कर रहे होंगे। हाय हाय हाय हाय।

गमे दर्द में रहता है, हदे दर्द नहीं मालूम, और टूटा है मेरा दिल इस कदर।

0: बोल मेरे बकरे, खाएगा क्या? मेरे प्यारे बकरे, तुझे लेकर जाऊं कहां? ओ मेरे बकरे, गाएगा क्या?
1: एक मैं, एक तू।
0: उठाए अपने बकरे के नाज और नखरे, वो भी कुर्बान होने से।
2: प्रॉपर्टी अटक शहर तौसीफ अहमद खाकसार और मुकम्मल टीम लखवाना टूल मीनावाल गट अख्तर गट खुशाले डेरे डेरे मुबारक शाह सेफ हैंड प्रॉपर्टी अटक शहर कम की चिबता उस पिंजा मरले लस मरले दयो कनाल दिर शुमरलो और मुख्तलिफ किस्म साइजनो कमर्शियल और कुरुन दपारा प्लाटुना मिलावेगी और कम छिप आसान अकसात और कैश तरह ताजु तरला से कवलिश है कुशादर उडुना द उबो सहूलत खपल जुमात और स्कूल और नूर हर किस्म सहूलियात पकी हम मौजूद दी सेफ हैंड प्रॉपर्टी अटक शहर मोबाइल नंबर 0315-6386।
0: हकीकत समझो या फसाना, अपना समझो या बेगाना, हमारा तुम्हारा रिश्ता है पुराना, इसलिए फर्ज था बताना कि बकरा ईद आ रही है, अब शुरू कर दो घास खाना।
3: इस तरह की चटपटी बातें सुनने के लिए तैयार।
2: खान दरबार रेस्टोरेंट अंबार इंटरचेंज सवाबे द मैनेजिंग डायरेक्टर शाह साहिब इफ्तिहार साहब और द आरजे अरशद इकबाल लतरफ ना टोल मीना वालों का द गट अख्तर गट खुशाले डेरे डेरे मुबारक शाह खान दरबार रेस्टोरेंट पा द दो तारीख और तीन तारीख पर दोबारा ओपनिंग कभी द बेहतरीनों और जायकेदार खुराकनों वाहिद मरकज खान दरबार रेस्टोरेंट अंबार इंटरचेंज सवाबी मोबाइल नंबर है दे 0336-30-34-636।
4: साद इंटरनेशनल ट्रेवल एंड टूर्स साद इंटरनेशनल ट्रेवल एंड टूर्स तरफ ना टूल मीना वालों ता दलवी अख्तर लुई खुशाले डेरे डेरे मुबारक शाह साद ट्रेवल एंड टूर्स अब्दुल रहमान प्लाजा सवाबी मुंगसर द उम्रे द हर किस्म पैकेज और द हर किस्म एयरलाइन द टिकट लपारा खपजी मुवरे एतमाद सरा राबिता उकड़े सीओ शाहिद खान मोबाइल नंबर 0398-28-629।
3: सबको ईद की खुशियाँ मुबारक हो।
4: शारजा ज्वेलर्स मीना बाजार टूपी द शारजा ज्वेलर्स मीना बाजार टूपी द इरफान हसन और बसीर हसन लोकवाना टूल मीना वालों ता दगट अख्तर गटे खुशाले डेरी डेरी मुबारक शाह द दीदाजीब कालू वाहिद मरकज द क्वालिटी और वजन जिम्मे सरा काली के तैयार भी और कुप आर्डर जोड़ावल वाड़े दो पता याद साथे शारजा ज्वेलर्स मीना बाजार टूपी।
5: कसाई आ गया।
6: अरे ओ सांबा, कितने बकरे हैं?
7: बकरा ईद मुबारक।
8: खुश खबरी हगठोल बीमारान चा हड़ुकी माछी हुई याद माते दो नपस गलत पेवन शिवी हुई चा दखपो औद लसुनो गुतो रगुन बन शिवी औ या गुते बेहरकत शिवी हुई औद चाचे दखपो डकुंडो दन न लाड़ खत्म शिवी हुई कोपे दर्दुना औ टकार कवि हगठोली जनाना चरचाखे औ लसुना सुनकीगी औ हगठोल मरीजान कमचे दमला दमहरो या द पटो मरीजान हुई या दमाशुमान उखपी कगी हुई न दहागे टोलो मरीजान द पारा द खुशालय खबर उस बाद हर इतवार पर उस बांदे सहर द अतो बजो नवाखली माजिगर चरसलोर बजो पोरे द इस्लामाबाद और द पेखवर नुमावड़े डॉक्टर आर्थोपेडिक एंड ट्रामा सर्जन डॉक्टर तारिक रहीम सेब MBBS MCPS FCPS एक्स रजिस्ट्रार HMC पिशावर सहर द अतो बजो नवाखला माजे शे साथे बिलाल प्लाजा अल सेद CNG दामोड जहांगीरा रोड मजीद द मालूमात द पारा या द नंबर अगस्तो द पारा पदे नंबर राबितो के 0314-15-13-232 यानी के 0314-15-13-232। खुश खबरी हगठोल बीमारान चा हड़ुकी माछी हुई याद माते दो नपस गलत पेवन शिवी हुई चा दखपो औद लसुनो गुतो रगुन बन शिवी औ या गुते बेहरकत शिवी औ चाचे दखपो डकुंडो दन न लाड़

0: विसळुंबने तर्जीदा द रेल्वे मेहकमे द क्वेटाना ट्रेन सर्विस नन हम द झंडवलु फैसल कडेदा द रेल्वे मेहकमे तर महा पेखवर न तलून के जाफर एक्सप्रेस नन न दिरवान कडे शवे ओ पेखवर न क्वेटे त तलून के जाफर एक्सप्रेस द जेगबाबाद ना वापस कडे शवे दे बलोचिस्तान के तीर द्वोर वजोना सद जरूरी अमल न द ट्रेन सर्विस झंडोली शवे दे द तहसील शबकदर द मेलो पार्क द टीएमए द लापरवाहे लवजी द डेरानो नो गंदुनो नडक प्रोते तफसील द इफ्तिहार पखर पद रिपोर्ट की आलमी मार्केट के दखाम तेल नरख के द कमी न पस पाकिस्तान के हम द पेट्रोलियम मसनुआत उप नरखोन कंसरगन शवे पेट्रोलियम मसनुआ की दरक कवी कचरे हुकूमत द लेवी मार्ज लिस्ट द रिलीफ मिलावे दो इम्कान दे द खत्मी फैसले ऐलान बनन दशपे 12 बजे कवलीशी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी द कामी असम्बले और सैनेट द बजट इजलास तराबलो मंजूरी वर कड़ेदा द कामी असम्बले बजट बा पिंजम जून द जुमे परवज माखाम पिंज बजे और द सैनेट इजलास बा पदग माखाम शपक बजे ताबिया कोलिशी द हुकूमती जरियो वेना दची द इजलास दौरान ब द बजट तजवीज और अहम माली उमूर बांधी खबर यात्री कोलिशी रवान माली काल विफाकी बजट के तनख्वादार तबके पर तनख्वाह ओ पेंशनरानो तबके पर पेंशन के द इजाफे पर शमूल पर गणो तजवीजनो गवर कवलिशी मुतहिद कामुनो द इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस ब्लैक लिस्ट की शामिल करी दी मुतहिद कामुनो द फैसला द इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस लखवाई जिनसी तशद्दुद पे खुप कवलु शवेदा बलहुआ भारत के दलवे अख्तर पर मौका मुसलमान पर नख कवलु पे होके बेकच इजाफा मखतरा गलेदा द मोदी हुकूमत द अकलियत दुहमन पालिसो भारत के मजहबी हम आहंगों नुकसान रसोले दे द भारत लखवा मुख्तलिफ खारुनों की द मुसलमानों मजहबी रस्मों अदायगी के द खंडानो अचवलो द अख्तर मुंज न पैसा रवलो और कुर्बान खिलाफ इश्तियाल अंगेज पेखी मखतरा गली दी खबरों की शामिल हो दिलोब द मैदान न खबर چی پاکستان فٹ بال فیڈریشن ترجمان ویلی دی چی دا فنڈز دا کمی لوجی کامی انڈر 20 ٹیم کوالیفائی لیگلو فیصلہ شویدا پی ایف ایف اپریل کی پدے حقلا آگاہی ہوم ورک کڑے وا خبرونا آخر کی شاملو دا موسم خبرونا محکمہ موسمیات لخوا راتلن کے سلیری شو گھنٹوں دوران دا خیبر پختونخوا زیادہ تر برخو کے با موسم اچ او گرم وی بعض علاقوں کے با زیادہ گرمی وی होमदाउ तरदे दमा मोहिम खबरुना नोर खबरुनो मालूमातो द पारा एफएम 94 रेडियो दिलबर सवाबी सरो से ओम में मरियम ओ द रेडियो दिलबर सवाबी टूल टीम इजाजत वाडू द अल्लाह पमान
1: Music and information station 94 We'll be back right after the commercial break.
2: The allopathic or the homeopathic the dwano ilajununa na umidishu bimarano the para the umid zere Heather Mumman homeopathic general hospital khope khabar na balki the Heather Mumman homeopathic general hospital branch ostasu pakhar sawabai ki pranistashwida katasu ki hum sukhpali bimare the classic homeopathic ilaj sara the

एंटी इंफ्लेमेटरी इंग्रेडिएंट्स थी। औद्योगिक प्रोडक्ट्स डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड हुम दी कुमचे सिर्फ और सिर्फ पसलूर उसपो की दनन दनन सासु दानी और दानु दाहुना पर मुकम्मल तोगबानी खत्म ही नो जर तरजरा दर्निज दी कॉस्मेटिक्स जनरल और मेडिकल स्टोर ना द बेलाडोना कॉस्मेटिक्स डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम वाखली और द स्किन देर मसले अवारे कई द मजीद मालूमात द पारा जमुंग दगा वेबसाइट विजिट कई www.belladona.com.pk

0: मेरे प्यारे बकरे, तुझे लेकर जाऊं कहां? ओ मेरे बकरे, गाएगा क्या?
1: एक मैं, एक तू।
0: उठाए अपने बकरे के नाज और नखरे, वो भी कुर्बान होने से।
2: प्रॉपर्टी अटक शहर तौसीफ अहमद खाकसार और मुकम्मल टीम लखवाना टूल मीनावाल दगट अख्तर गटे खुशाले डेरे डेरे मुबारक शाह सेफ हैंड प्रॉपर्टी अटक शहर कम की चिबताओ पीज मरले लस मरले दयो कनाल दीर्श मरलो और मुख्तलिफ किस्म साइजनो कमर्शियल और कुरुन दोपारा प्लाटूना मिलावेगी और कम छिप आसान अकसात और कैश तरह ताजु तरला से कवले शे कुशादर उडुना द उबो सहूलत खपल जुमात और स्कूल और नूर हर किस्म सहूलियात पके हम मौजूद दी सेफ हैंड प्रॉपर्टी अटक शहर मोबाइल नंबर 0315-6386।
0: हकीकत समझो या फसाना, अपना समझो या बेगाना, हमारा तुम्हारा रिश्ता है पुराना, इसलिए फर्ज था बताना कि बकरा ईद आ रही है, अब शुरू कर दो घास खाना।
3: इस तरह की चटपटी बातें सुनने के लिए तैयार।
4: एक दिन जल्दी ना करें, जिंदगी सबसे कीमती तोहफा है। ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करें, मोटर बाइक पर हेलमेट पहने और गाड़ी चलाते वक्त एहतियात करें ताकि ये ईद खुशियों भरी हो, हादसों भरी नहीं। ये पैगाम आपके लिए बेलाडोना कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान और रेडियो दिलबर FM 94 सवाबी की तरफ से पेश किया गया।
5: सुगमई खारश व खुशहाली शुआ सवाबई की रोखनाई शुआ ब्याद जश्न तैयारी शुआ शोरो दाख्तर मुबारक शुआ। अख्तर दा खुशालियाने रेडियो दिलबर FM सलूर नबी सवाबई सरा वो मानजे
6: अख्तर मुबारक शाह अख्तर मुबारक शाह अख्तर मुबारक शाह अख्तर मुबारक शाह।
4: बच्चों को आतिशबाजी और पटाखों से दूर रखें, खुशियां महफूज हों तो ईद यादगार बनती है। आतिशबाजी और पटाखों से हाथ जल सकते हैं और हादसात भी हो सकते हैं। अपने बच्चों को इन खतरात से दूर रखें और एक महफूज ईद मनाएं। ये पैगाम आपके लिए बेलाडोना कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान और रेडियो दिलबर FM 94 सवाबी की तरफ से नशर किया गया।
7: यो यो पुख्तनदा निन मो अख्तर संग तेरेजी ग्वाड मुरशी नो वावरे दिलबर FM सलूर नवी सवाबी त अख्तर जांगड़ी प्रोग्रामुना दिलबर FM सलूर नवी स्वाबी सासु द खुशाले मलगरी दिलबर FM सलूर

0: ये है खुशियों की आवाज, ये है ईद का जश्न।
1: ईद के साथ साथ
2: हमसायों के आराम का ख्याल रखें, खुशियां बांटें, शोर ना फैलाएं, ऊंची आवाज में म्यूजिक बजाना और शोर शराबा करने से दूसरे लोग परेशान हो सकते हैं। अपनी खुशियों के साथ साथ दूसरों के सुकून का भी ख्याल रखें। ये पैगाम आपके लिए बेलाडोना कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान और रेडियो दिलबर FM 94 सवाबी कितावन से पेश किया जा रहा है।
3: मसाजिद से बुलंद होती तकबीरें, घरों में मीठी सवैयों की खुशबू और हर चेहरे पर खुशी की मुस्कुराहट,
4: और हर चेहरे पर खुशी की मुस्कुराहट।
3: तमाम सुनने वालों को दिल से ईद मुबारक। आप इस वक्त सुन रहे हैं रेडियो दिलबर FM 94 सवाबी, जहां ईद के इस खूबसूरत दिन पर जारी है ट्रांसमिशन, ईद स्पेशल लाइव ट्रांसमिशन। आपके पसंदीदा गाने, खूबसूरत पैगामात, दिलचस्प गुफ्तगु और ईद की खुशियों से भरपूर लम्हात। सो स्टे ट्यून्ड, अपने दोस्तों और प्यारों के साथ ईद की खुशियां बांटते रहिए, सिर्फ दिलबर FM 94 सवाबी, द रियल साउंड ऑफ सेलिब्रेशन।

ओके राजे गुरुजी मुंगसर फलाफकार सुख जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।